ये पता नहीं है दाई सिले देख कितनू रही है। पता नहीं है सिले देखी थे नूरी है अली बदर खतरे अली बदर खतरे जेजू कम ले कौन बांध तो अली बदर खतरे जेजू कम सारी दस अली बद प्लीज फ्रांको वाली बताई जे सांते फुगले दाम qui n'ont pas leur mari. Je santé pour les filles qui n'ont pas leur mari. Zakelin ou Dita, on va rêver, on veut cousir. Mais nous, ils n'ont pas dormi aussi. Allez, patanez, d'aille, si les dieux quittent nous rient.